कार्यक्रम हिमाल वारिपारी क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारी।

0: चाहिँ चिकित्सा फनेन दि फै सरा चाहिँ सिरपा न डुगुए जुल फनेन डिया लकी कलर जेटा टालामा पासमिसा चाहिँ छ छटाका दिल्दा
1: पाटा ज्यू हजुर पाटन समुदाय काखा सिहार केन्द्र पाखे मिखे जाची यागु छौ कुपन लिसे क्यापिटल मम किंग जमल पाखे न्यू प्लेट मम भपिगु कुपन छमा पासा ट्याका दि फै रासा मम पासा ट्याका दि फै
0: मेरो पासान ट्याका दि फै माटे ये फुटु छे पाखे तया दिगु छगु कुपन भ छगु कुपन चाहिँ निम्से निटी भजन भप्या दि फैरास अठे न साम खुसी चनाडीमा बाजु रविन्द्रमान जोशी जी तया दिगु एनटीसी यागु रिचार्ज कार्य न ट्याका दि फै
1: नक्तनी तुलसी जुन धाइदी रुङ्गुगुदु वुङ्गु थोए भाद्र दस गते खुसबाना लाना चाहिँ गुली मनुतोसँग चाहिँ थगु ज्यान गुम्याना दिल अलि आलिन्त नि पिपासपिन त
0: नलापासपिन
1: यो सित चाहिँ थन थुजा विषम परिस्थिति चाहिँ ग्वाली यागु निटी चाहिँ थो झिगु सोचे जुइटेङ्गु जुल बहिदार बाबु सुकुन्दा फिल्म्स प्रोडक्सन प्राली पाखी देगा दिगु थु फिल्म खरास थुके निर्देशक लेखक चाहिँ सुख छि टुकमायन डिफ है थौया दक्ले नापाङ निस हजुर डक्लिन नाबा निसथोए ख थुगु इले छिक्पिसम फोन याना हेदिया बहिदार बाबु चाहिँ सुना चोया दिउ ख अले ठो संकीपा चाहिँ सुना निर्देशन याना दिउ ख नाङ्कना दिफे मला तुलसी ज
0: पक्का न ओके निति छिक्स चाहिँ जी फोन फोन ल्या ढा छिक्पिन त ngeni pp sopi khu 52 346 जी गुठ स्टुडियो फोन ल्या फोन याना थो जिनक चिन्तै गो निसय लिसा बिया दिन फै मफ्ट ढास ढुकमा जग्न याना दि फै मखला अनता ज
1: हजुर पक्का न
0: याना थो छिक्पिसन टिकट न्याना चाहिँ सहयोग बारी पिजी ज्या घापा ज्या चाहिँ ग्वाली या कठ चाहिँ टिकट ठो टिकट चाहिँ म चाहिँ यहाँ सटैटो डुला यहाँ सला छिक्मिटा झिठो पसिना धाइनिसा नेवा सकिबा चाहिँ यहाँ सट्यो म छिके टर ग्वाली कठ त सुन्न छिके मुखु थिएँ त अन्त
1: खो छिथौँ कनि विभिन्न सङ्घ संस्था ग्वाली न फोना चङ्गुदु एल्छीसँग गुली पासपिसम बिहानन दिलेजी तर थोछौ सङ्कीपा सोया थन मनोरञ्जन क्याफे रास वे ठेवा मेपिन त ग्वाली आउ न फै उठो
0: छौने
1: पास चाहिँ रुङ्गुको थियो एकै त लस खुसिया
0: जोजो लपा
2: जोजो
0: लपा निम्सिए पाखे
2: सुजन महाजन कृतिपुर तुम्रो तर्न
0: सुजनज्यू मफु
2: मफु तुलसी दिदी मफु ख
0: मफु नि है जिबिन यमा जाजो न्याक वया चनु गुख बजे नया वही गुख सुजन जु जाजो नेना चना दिगु डोला ठाँ चाहिँ छु विषयले खलबली आउट गर्दा कनङ्गु नेना डिटो नु जिनी ठुलो जी मिसाला बैडार बाबु सङ्कीपा नेना दि कि मरिया ओले छ झे कीर्तिपुर सिनेप्लेक्स हेर्न ठोके यो चार दि सोल जी ढुङ्कल होला बोले किनी ढुङ्कल अलिपलिप चाहिँ बिचाया भने आयो मिटिङ चाहिँ ठोया भइगु असोज 3 गते सञ्चरबार पाटन ढोका अशोक पार्टी प्याले से केनी गोटी केनी टिङ्गु ढु बैडार बाबु सङ्कीपा नेपाल भाषा पाखी चाहिँ भाषा चाहिँ सुन्ठ सिए झिँ छटा इले 11 बजे ठुलो सुन्ट सिए झिँ छटा इले अठेन नेपाली भाषा डबिङ यान त सियो जोस चाहिँ हिने सिए दुई त अहिले टिकटी म चाहिँ यहाँ सटक टैटोडु ठो चाहिँ यहाँ सल टरौँ खमखो ठो बारी पिडित पिन्ट घापा ज्या चौँ पिन्ट ग्वालिया कोठा चाहिँ अलि ठोसे अपन छिक्पिसँग चाहिँ ग्वालिया म जोस चाहिँ अनि हले झ्याबले झिटो सपोट्या दिप है तर टिकट काट चाहिँ यहाँ सटक मुख अनि सुजनजी सोच हेरी खो कि मखो
1: अले सुजनजी थौया निसयाली सन बिहा दि फै ठो बहिदार बाबु चाहिँ सुना चोया दिउ ख अल्ठो सङ्कीपा निर्देशक सुख निर्देशन सुना यान दिउ ख निर्देशन नाम देखु म निर्माता राम लगानीकर्ता जुल निर्देशन लेखन नाम चोया दि म अले सङ्कीपा देका दि म
2: डाक्टर कृष्ण कुमार
0: हजुर छिकुली लिसा प्याछि खकी मखुलिपाङ इटक नेना दिसने सा
2: नेनबाट चाहिँ डाक्टर डाक्टर कृष्ण कुमार कुमार श्रेष्ठ मला
0: हजुर हजुर आज छ सर निर्देशन भाइ दु
2: निर्देशन
0: छिता धुकमाया अपुया नीति वेकयो लिपाङ्गु नाछौ ढ्याला सर नेम चाहिँ साई ख वेकयो निर्माता मखु निर्देशन
2: निर्देशन
0: किपाले मु भूमिका पाखे मिठा न डिगुडु कल छिटा अफ गयो नीति चाहिँ जी अफ सुजेन महर्जन कृतिपुर तु द टोल पाखे जाजुले पोतिका झाइदिल अलि झिसन ये नै गुन्हे सयाली सन बिया दिगु दु प्याछी खमखु वाला चिज लिपाङ इले ठ्यागु जी आइतरास स्टुडियो इले चाहे नापाङ्गु दिपाया इ वेट हुङ्कुगु संकेत चाहिँ टेक्निसियन पासा या नचना दिगु दु वसियान या चाहिँ फोने चाहिँ पासा नदी पासाइ त छौ क्या लाइट अनि हजुर पासा चाहिँ
3: ठ्याक्कै याद होला बासुजी पकाए बासुजी पकाइ एकदम
0: छिटो बैदार बाबु सोइदी ढुङ्के मरु नि पका न सोच है दिजी मना टुना छ
1: नुद्धजु
3: हजुर
1: पासा पिन्त अलि छेज पिन्त न बना है दि रिउ न बलसा क्याच न छ र
3: त थो जि एकदम स्यानियम पासम दु रात तामल रात जि नि व त अब व जि कति पक्का
1: हजुर एक एक सुबा
3: सुबा गनि एकदम सुबा
1: बियादि ल हजुर एक एक सुबा वे कख
0: फुलम बानीसुर पाखे चाहिँ बुढो रत्न भज्राचार्य ज्यू स्टुडियो इल चाहिँ डक्सै नापाङ्गु डिपा यी जुगुडु अठिजुनी चाहिँ हाइट डिपा छिर्मिसँग फोन चाहिँ फोने सपो चाहिँ डिपाको चाहिँ यो इले चाहिँ सपो तयारी त हिना भएन छैन
4: नमस्कार म सुरेश कुमार तपाईँले क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज ट्युन गरे

0: डाक्टरको परामर्श बिना औषधि सेवन नगरौं, आफ्नो स्वास्थ्य प्रति सचेत रहौं।
1: सामाजिक सचेतनाका लागि क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज।
2: Time check.
3: It's 6 p.m.
4: This time check is brought to you by High Face. Be prepared. Safety first.

0: डाक्टरको परामर्श बिना औषधि सेवन नगरौं, आफ्नो स्वास्थ्य प्रति सचेत रहौं।
1: सामाजिक सचेतनाका लागि क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज।
2: टाइम चेक,
3: इट्स 11 PM।
2: दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय हाई फेस, बी प्रिपेयर्ड, सेफ्टी फर्स्ट।

धरती भरि नौलो रङ्ग नयाँ बिहानी छाइसक्यो, धरती भरि नौलो रङ्ग नयाँ बिहानी छाइसक्यो, प्रभातले मनभरि मुटु भरि नयाँ लाली लाइसक्यो, प्रभातले मनभरि मुटु भरि नयाँ लाली लाइसक्यो।